का मन संतन का किया, संता ने कीता नहीं, संता दा कीता होया नहीं, संता ने तन दिता है नहीं, संता ने तन दिता है नहीं, संता ने मन दिता है नहीं, ऐसी गल नहीं। मैं अपना तन मन धन संता नूं अर्पण कर दिता, संता दा कर दिता, तन संतन का, तन संतन का, मन संतन का किया। मैं अपना तन मन धन जो मैनूं वाहिगुरू ने दिता है यह मैं संतां दे हवाले कर दिता। इस शरीर नूं अमृत वेले दा जागना बख्शो, इस शरीर नूं रहत बख्शो, इस शरीर नूं नाम दान इशनान दा जज बख्शिश करो, इस शरीर नूं जपना जपाउणा बख्शिश करो। मन संतां दे हवाले कर दिता गुरमुखो, इस मन दी होमे दूर कर दिओ, तुहाडी बड़ी कृपा होवे। धन भी संतां दे हवाले करता गुरमुखो, मैनूं वर्तना नहीं आउंदा, पुठे पासे लै लै के जांदा। जदों बहुता हो जांदा ना बंदे नूं पुठे पासे लै लै के जांदा। बड़े भागा वाले ने जिन्हां नूं वर्तना आ गए, ते वर्तना उन्हां नूं आया जिहड़े सतसंगत तों टुटे नहीं, सतसंगत नाल जुड़े होए ने। उन्हां नूं पता है धन नूं कित्थे वर्तना है, वो जानते ने धन कित्थे लाउणा है, उन्हां नूं भले पासे वर्तना आउंदा है। और जिहड़े लोक इह समझदे ने कि धन केवल खाण पीण मौज उड़ाण वास्ते, ऐसा भी बुजुर्ग कहिंदे ने कि जे किते ये पैर थले आ जावे बेअदबी हो जाएगी, ऐसी गल नहीं। धन की बेअदबी वह लोग करते हैं जिहड़े धन नूं जुए ते लाउंदे, उन्हां दे घरों नाराज होके तुर जाते। ते जिहड़े धन नूं भले पासे लाउंदे ने उन्हां ते जे धन कोई अपने आप च शक्ति है, अपने आप च कोई देवी देवता मन लैंदे ने लोग, जे कोई है तां इह तां राजी इस गल च होवेगा। जे इहनूं धरती च दब दिता ते किवें राजी रहे, जे इहनूं पुठे पासे वरतिया किवें राजी रहेगा। हाँ, इहदा आदर किस गल विच है, इह किसे चंगे पासे लगे परोपकार ते सेवा च वरतिया जावे ते धन राजी होवेगा। फिर कोई धन दा कोई देवता कुबेर या लक्ष्मी जे कोई मन्नी जांदी है तां फिर उह राजी हो सकदे ने, जे उह राजी होणगे ते शायद वधेरे रजा देणगे। इस करके गुरमुखां ने की कीता है, धन भी संतन का किया, संतां दी जुगत तों बिना नहीं वरतना, संतां दी व्यौत अनुसार वरतना, भले पासे वरतना। संत प्रसाद फिर अगो संत की देंदे ने, तू तन संतां नूं दिता, तन संतां नूं दिता, मन संतां दे हवाले कीता, ते फिर की होया, संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थिया। उन्हां ने अगो नाम धन नाल लद के रख दिता, नाम धन नाल भर दिता, सारे ही सुख आ गए, सर्व कुशल तब थिया। क्यों ना फिर उन्हां दे नेड़े नेड़े होके बैठी जिन्हां दे कोल इह धन है, जिन्हां कोल नाम धन है। मन देवा तिस अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रभ लादे जियो, जिन्हां ने गुरु की जुगत नूं लै के गुरबाणी दे गुरबचना दे अनुसारी हो के जिन्हां ने प्रभु दा भेत पाया। मैं अपना मन उन्हां दे हवाले क्यों ना करां। सेवड़ पागी जिन तुम जाने, भागा वाले ने जिन्हां ने तैनू समझे, वाहिगुरु जी जिन्हां ने तैनू जाने है, भागा वाले रहिंदे तां सारिआं विच हुंदे ओ संसारी किस्म दे ने, सब के मध्य अलिप्त निर्वाणे पर लोकां च रलदे नहीं। गुरमुख दी की गल है, वह रहिंदा लोकां विच ही है, खांदे लोक भी ने वह भी खांदा है, तुरदे लोक भी ने वह भी तुरदा है, सौंदे लोक भी ने वह भी सौंदा है। लोक भी बोलदे ने गुरमुख भी बोलदा है, लोक भी कमाउंदे ने गुरमुख भी कमाउंदा है, रहिंदा सारिआं दे विच है लेकिन वक्खरी तरह दा। लोक खांदे ने स्वादा पिछे, वह खांदा है शरीर नूं चालू रखण वास्ते, जिउंदे रहण वास्ते। कुछ लोग होंदे ने ऐसे भी जेने खाण वास्ते ही जीउंदे ने ते खांदे खांदे ही मर जांदे ने। खाण वास्ते गुरमुख जीउंदा, इन्ना कु खांदा है अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, उन्ना कु सौंदा जिन्ना कु शरीर नूं जरूरत है। लोक सुते ते उठते ही नहीं, फिर उठाउणे मुश्किल हो जांदे ने। उह सौंदा इतना कु कि सुतिआं भी वागरू वागरू करदा रहे, ते अमृत वेले दा कदे उह खुंझण वाला ना बने, अमृत वेला उह संभालदा है। इहो जिहा जपी तपी हठी लोक जिहड़े मन नाल जूझदे हो, शरीर नूं चंगी किरत विच ला के लोक भी कमाउंदे ने, गुरमुख कमाउंदा है। लोक हेरा फेरी नाल कमाउंदे ने, गलत पासे उड़ाउंदे ने, गुरमुख सच्ची सुची नीयत नाल धर्म दी किरत करके कमाउंदा है, भाग लगदे ने ते चंगे पासे वरतदा। गुरमुख रहिंदा संसार विच है जुगत वक्खरी, सब के मध्य अलिप्त निर्वाणे साध के संग उन भवजल तरिया। ओ संसार तो पार उतरन वाले ने जिन्हां ने इस किस्म दा बेड़ा बने, गुरमुख ताई दा बेड़ा जिन्हां ने बने। सगल दूत ओ नसादे जीओ, जेड़े दे तरन विच रुकावट बनन वाले ने,

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले।

कोई गावे कोई सुने, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृत की बाणी, जिस बाणी प्रथाएं गुरु पातशाह कहते हैं।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असां कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नूं दित्ती है मेर कीती है पातशाह ने आख्या भाई कोई सुने कोई गावे कोई उपदेश करे किसे भी जाति का होवे कोई नीच कोई ऊंच नहीं बल्कि सारे का सत्कार है।

0: तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इसते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। साथ संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तो कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करान। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग गया, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है, ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए सोने चांदियां दे ढेर लाए हीरे जवरातां दे ढेर लाए आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री, हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नूं कोल सदिया,
अपने हिरदे नाल ला के पाई लेने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं।

गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी ते

गुरु पातशाह इतो हुण पिट हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी परी सिर ते चुकिया। अज एडा मी पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं। बाबा अमरदास जी आ सेवा दे पुंज, सिर ते गागर चुकी ते दुरदे हुए आ रहे हैं। रस्ते विच जुलायां दी खड्डी।

एतन होती खाक में माड़ी गोर करे, एतन होती खाक निमाणी गोर करे। अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए।

करना कभी रात उड़ सकेल के पुड़िया बांधी दे दिल सो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए

चले चल हार बिचारा ले मनो, चले चल हार बिचारा ले मनो। गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिखिनो, जिमें पुछे आसमान

जिस फख्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अम्मान लिया मनमोहन, राम नाम हृदय में तो

पुकार ते तरलियां तो बिना होर पल्ले की पैंदा। मालक तो विछड़िया दे पल्ले होर कुछ नहीं। कूक पुकार परेशानी दे तरलियां तो बिना होर कुछ नहीं। ते ए कोई बंदा कवे कि तुरों डिगी हुई आफत है, ऐसी गल नहीं। साहब कहंदे ने मेरे अपने कर्मा करके ये कुछ मेरे पल्ले पिया। मालक नूं पा जाण वास्ते मेरे पल्ले गल ही कोई नहीं। ओदे दर ते प्रवान होण वाली मेरे कोल कोई चंगियाई हुंदी तां मेरी हालत क्यों हुंदी। मन कुचजी मैनू चज कोई नहीं। अमामन डोशड़े चज है कोई नहीं ते दोषां दा अंत कोई नहीं। गलतियां भुलां ते कमियां दा अंत कोई नहीं। अमाउंदे दोष मेरे जीवन विच ने। अमामन डोशड़े हों कौं शौरावन जाऊं जीओ, मैं किवें मालक नाल मेल कर सकां। पति परमेश्वर नाल मेरी सांझ किवें बने। एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाऊं जीओ। मेरे नालों चंगे चंगे गुणा वाले, चंगे चंगे सुचज वाले, चंगी चंगी करनी वाले किन्ने बैठे ने। कौन मेरे वाल निगाह करे।

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहली शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

लोक मथे रखने वास्ते तेरे चरणा से पहुंच सदके अग्नि गोविंद सिंह तेरा ही करना शुक्र है जे गुरु के प्यारे गुरु के सुख दीदार होते करने वास्ते जान ते फिर इस मन नाल जान इस ख्याल नाल जान के धन सो दे इस जहां तो वसिया मेरे सजन मीत मुरारे मेरे सजन ते मीत मित्र घनेरे करत की मेरा दुख काटे को धन सो मीत धन सो दे मेरे सजन ते मीत।

नदेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठियां ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने, की गल? गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां, तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रहीआं ना महाराज, असी ये विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां प्रक्रमा कीतियां, पांच पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंघो अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया, अज तो बाद देहधारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु गुरु है बाणी। आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच जिन्हें मेरे शरीर करके दर्शन करने होण, मेरे खालसे का दर्शन करे, जिन्हें मेरे नाल वचन करने होण, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी प्यार नाल पढ़े, मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा। ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया का धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सर्वत का भला करेगा। अज ये वचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया, हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकने वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सर्वत का भला करना है, दूजियां का धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है, आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दी, मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए। किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा, होर भी कोर पाप करदा है, घरां विच्चों कीमती समान भी लुट लिया, ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सतसंगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜੇ ਵਧੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਵਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਬਈ ਆ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਗੱਡੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਮਚਾਈ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਿਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।